आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो विदस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है श्रीमती हरजीत कौर लांबा, प्रस्तुतकर्ता आजय किरने।
1: कार्यक्रम घर परिवार के आज के अंक में मैं किरनी सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं और हरजीत लांबा जी आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा सत्श्रीकार नमस्कार और किरनी जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप इस कार्यक्रम में आए। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले। एक नारी अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि आज चर्चा का विषय है नारी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ हरजीत जी, आप बेटियों यानी नारी की व्याख्या किन शब्दों में करोगे?
2: देखो, जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है। बेटी के बिना कोई परिवार पूरा नहीं होता। बहुत खुशनसीब हैं वो माता पिता जिनके परिवार में बेटी होती है। आपकी बेटी हमेशा आपकी स्थिति को समझती है। अच्छे बुरे का बेटियां परिवार के लिए उपहार की तरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बेटी चाहते हैं ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। कई लोग बेटी को बोझ समझते हैं लेकिन ये सच नहीं है। बेटियां उनके लिए वरदान होती हैं। यही बेटी नारी की भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ, जो बेटी है वो घर को स्वर्ग बनाती है। हर एक चाहता है कि उसकी एक बेटी हो। बेटी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अमूल्य रचना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नारी समाज में अनेक रिश्ते निभाती है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, दादी का हो, आपका क्या मानना है? कृपया विस्तार में बताइए।
2: परिवार में बेटी और बेटे का समान रूप से महत्व होता है। वर्तमान समाज में भेदभाव को मिटाकर बेटियों को महत्व देना चाहिए। बेटियां ही घर की संचालन शक्ति होती हैं। माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में उनका सर्वांग जीवन त्याग एवं सेवा की लंबी गाथा है, उसका बहुत वर्णन है।
1: जी हाँ, एक नारी जो है बहन का, माँ का, पत्नी का, दादी का, सारे रिश्ते बखूबी और बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। अब हरजीत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आज की नारी है, नारी का वर्तमान जो स्वरूप है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: देखो, नारी समाज में भी सबसे आगे आई है। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बेटियां विराजमान हैं। पुराने समय में लड़कियां बहुत समझी जाती थी लेकिन आज का युग नारी युग है।
1: जी हाँ, मेरी राय भी यही है। मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान की नारी है वो आर्थिक की दृष्टि से आजाद हो, शिक्षित हो, पुरुष की दास्तां से मुक्त हो, दोनों यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी,
2: देखो किरनी जी, हमारे समाज में जागरूकता आई है, भ्रूण हत्या अब कम हुई है, गवर्नमेंट ने भी कानून जो है बना दिए हैं, बहुत सख्त कानून बनाए हैं कि बेटियों को जन्म से पहले आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं और रेशों में भी लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर हो गई है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है।
1: जी हाँ, इसीलिए हम सबको एक नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी से ही जीवन है। जी, आपकी कविता से मुझे भी दो लाइनें याद आ गई। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। आप बताओ आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
2: उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पारे कराते। किरण जी मुझे ये बहुत पसंद
1: है। चलो आपकी पसंद का ये गाना हो जाए। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है और इसकी जो पहली दो लाइनें हैं जो कश्मीरी में है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि भाष से खानो मजगूर दुमे रक्षत मैंने बजानो। अब सब सुनने वालों को और आपको हम ये वाला गाना सुनाते हैं।
2: वाह खूब।

0: बहुत ही मनमोहक गाना था, हमने और लिस्टनर्स ने सुना। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आज के मौसम के हिसाब से आप कौन सी रेसिपी श्रोताओं को आज बताने वाले हैं?
1: आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठंडा हम खाने को भी मन करता है और पौष्टिक भी है। आजकल किरणी जी, बच्चे जो हैं वो फल फ्रूट कुछ चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। तो छोटी सी रेसिपी है, उसमें घर में फ्रूट पड़े रहते हैं, जैसे सेब, अनार, केला, कोई भी आप ले सकते हो। उनको छोटे छोटे काट कर बाउल में डाल लो, घर की मलाई पड़ी होती है उसको फेंट लो, अगर नहीं है करीम ले आओ, उसमें शहद मिलाकर उनको मिक्स करके आप बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, ये व्रत में भी खा सकते हो आप।
0: जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और कम समय में बनने वाली, मैं भी आज ही ट्राई करूंगी। अब आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए
1: तो क्यों ना वो लगाया जाए, अपने पुराने टाइम का गाना, ओ बाबुल प्यारे।
0: जी हाँ, आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पेश है बाबुल प्यारे।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप कोई घरेलू नुस्खा बताए जो सबके लिए कारगर हो।
2: हाँ जी किरणी जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि स्किन के लिए, खुजली के लिए, जैसे नारियल तेल में

0: थोड़ा सा कपूर मिला के लगाएं कि उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा।
1: जी हाँ, हमारे श्रोताओं को कुछ तो इससे फायदा मिलेगा। मैं भी एक घरेलू नुस्खा आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है हल्दी। हल्दी तो हर एक किचन में मिलती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगे तो गर्म दूध में हल्की फुल्की हल्दी डालकर पिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो मसल्स में आई सूजन में राहत दिलाती है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हमारे ये दोनों घरेलू नुस्खों से शायद हमारे श्रोताओं को कुछ हेल्प मिले।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आज अंबाला कैंट के पहले FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आए हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: हमें बहुत खुशी है कि अंबाला कैंट को अपना FM स्टेशन मिला है, जिसके माध्यम से हम सभी अंबाला वासी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचा सकते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी हो। मैं हमेशा FM सुनती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबाला में मेरे घर के पास FM खुल जाएगा, कि जिसको मैं बड़े मन से सुनती हूँ। अब
1: हरजीत जी, अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अब लास्ट में आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
2: आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।
1: आइए, आपको हरजीत जी के पसंदीदा गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। इसको प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
1: मुरादे गरीबों की भर लाने वाले, मुसीबत

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जिसको लिखा है सरस्वती कौल बट जी ने, जो पंचकुला में रहती हैं। कश्मीरी पंडितों को अपने वतन से बेघर हुए अब लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं, यानी 3 दशक से ऊपर। बच्चे जवान हो गए, जवान बुजुर्ग और बुजुर्गवार या तो हैं या फिर त्राही त्राही करते सिधार गए। कैसे दुखद त्रासद स्थिति है कि नई पीढ़ी के किशोर युवाओं को यह नहीं मालूम कि उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मातृभूमि कौन सी है। बाप दादाओं से उन्हें जरूर सुना होगा कि मूलतः वे कश्मीरी पंडित हैं, मगर 1990 में वे बेघर हुए थे। एक चीज तो सत्य है, कश्मीर से हम सबको निकाला गया है, पर हमारे भीतर कश्मीर को कोई भी नहीं निकाल सकता। इसी संदर्भ में हमारी बहन सरस्वती कौल बट जी ने यह कविता लिखी है। आइए मैं आपको ये कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है कब तक। चंद सांसें लेना कठिन है, चंद सांसें लेना कठिन है, इंसानियत भी शर्मसार है। वीरान चमन और शुष्क है भावना, मौन खड़े हैं पर्वत, नदियां स्थिल हैं। देख रहा है चुपचाप विस्तृत आकाश, थम सी गई है वितस्ता। शंकर आचार्य और कलहन की धरा आज रक्त रंजित है। सब और नरबक्षी मंडरा रहे हैं, हर कोना है बहुत ही डरावना। न जाने कब किसकी बारी है, जिंदगी यहां मौत से हारी है। मौत का तांडव जिद पर अड़ा है, हर मोड़ पर राक्षस खड़ा है। चीथड़ों में लिपटी लाशें चीख रही है, किसी की मां किसी का भाई किसी का बाप पति किसी का, मौत की भेंट चढ़ा है। कश्यप तेरी धरती पर इतना चीतकार, भगवान तुमने ही तो ये सृष्टि बनाई, हे ईश्वर तू कर कोई उपकार, रोक दे ये घातक नरसंहार, रोक दे ये घातक नरसंहार। ये कविता लिखी है बहन सरस्वती कौल भट्ट जी ने, और ये कविता खुद ही उस दर्द को बयां करती है जो हम जागते सोते अपने आसपास ही महसूस करते हैं। ये 33 वर्ष भी अब 33 दिन से ज्यादा नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कल ही हमने अपने घर को छोड़ा है। प्रभु करे किसी का घर ना छूटे। आखिर घर तो घर है। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो की दस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सुना है कि झूठ भी प्यारा हो? नहीं सुना ना? तो मैं आज आपको एक प्यारा सा झूठ सुनाता हूं। ये जो प्यारा सा झूठ है, ये मेरे परम मित्र श्री डॉक्टर कौशल किशोर जी ने ही मुझे भेजा है। तो आइए हम सब सुनते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है प्यारा झूठ। इसमें बच्चों की मानसिकता देखने को मिलती है। हम समझते कुछ और हैं और हकीकत कुछ और होती है। मैं तो इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा और ना ही वापस आऊंगा। सपना अपने 10 वर्षीय बेटे सार्थक के शब्द सुनकर सन्न रह गई कि ये क्या कह रहा है? अपनी दादी को बुढ़िया बता रहा है? कहां से सीख रहा है ये इतनी बदतमीजी? सपना सोच रही थी कि बगल के कमरे से सार्थक के चाचा निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? सार्थक ने फिर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। हमेशा डांटती रहती है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। घर के सब लोग चकित थे। सपना के पति, दो देवर और देवरानी, एक ननद, ससुर और नौकर भी। सार्थक को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी दादी की ही तो थी। पैरों में बहुत दर्द रहता था, पर पोते के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी पोते को, और करती भी क्यों ना, क्योंकि घर का पहला पोता था। पर अचानक सार्थक के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। रात को खाने पर उसे बहुत समझाया गया, पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। सार्थक के पापा ने तो उसे थप्पड़ भी मार दिया। सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने मां जी नहीं जाएंगी। अगले दिन से कोई और उसे लाने और ले जाने लगा। सपना का मन लेकिन विचलित रहने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सपना नाराज भी थी सार्थक से। शाम का समय था। सपना ने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए ढूंढने लगी। छत पर पहुंच बेटे की बात सुनकर ठिठक गई और छुपकर सुनने लगी। सार्थक अपनी दादी की गोद में अपना सर रखकर कह रहा था, मैं जानता हूं दादी कि मम्मी मुझसे नाराज है, पर मैं क्या करता। इतनी ज्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने भेज देते थे। आपके पैरों में दर्द भी तो रहता है ना? मैंने मम्मी से कहा तो उन्होंने कह दिया कि दादी अपनी मर्जी से जाती हैं। दादी, मैंने झूठ बोला था, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए ही तो किया ना। मुझे कुछ और सूझा नहीं। आप मम्मी से कह दो कि वो मुझे माफ कर दें। सार्थक कहता जा रहा था। सपना के पैर और मन सुन पड़ गए थे। अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे के बड़प्पन को महसूस करके सपना को गर्व हो रहा था। सपना ने दौड़कर सार्थक को गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सभी पढ़े लिखे नासमझों को समझाने का यही तरीका ठीक था। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। तो दोस्तों, ये तो हमारे ऊपर है कि हम अपनी संतान को किस प्रकार के संस्कार देते हैं।
जैसे संस्कार हम अपनी संतान को देंगे वैसे ही आगे उनकी जीवन शैली हो जाएगी। कोशिश कीजिए अपने बच्चों के सामने अच्छी भाषा का प्रयोग करें, अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोलें और ऐसी कामना भी रखें कि किसी को भी झूठ ना बोलना पड़े, वाहे वो झूठ चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता पर। आप अपने दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, अगली कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

तेरे इंतजार की चाहत में लुट गई, खामोश हो गई, फना हो गई, भीगती बारिशों में चिल चिलाती धूप, सुबह शाम रात की चुप्पी में मैंने तेरे लौटने तक इंतजार किया।

होती है तो दिल कहता है, कहीं वो तो नहीं। इन हवाओं के झोंकों में तुम्हारे बदन की खुशबू से मेरी मायूसी टूट जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। शायद तुम आओगे, चलोगे मेरे साथ सफेद बर्फ की चादर पे, पिछले मौसम की तरह।

खामोशियों को मुअत्तर करती हैं। बस तुम्हारी आवाज सुनते ही और सुकून पाते हैं, मेरे हर दर्द की दवा बन जाते हैं आप। जाने अनजाने जब आईना देखते हैं तो तुम नजर आती हो, तुम ही नजर आते हो। जानता हूं ये समंदर है, इसमें तैरा नहीं जा सकेगा, पर न जाने इसको नापने की ख्वाहिश उभरती क्यों है। जानता हूं तुम्हें छूना एक ख्वाब की तरह है, पर फिर भी क्यों तुम्हें अपनी नींदों में शामिल करता हूं शब रोज़।

जिंदगी गुजर गई तन्हा, यूं ही तन्हा तन्हा। साथी थे पर छूट गए, अब यह रह गुजर भी है हमारी ही तरह तन्हा तन्हा। बस हम तलाशते हैं वो साथी जो कभी हमारे अपने थे, सिर्फ

हमें चंद पलों के लिए मुझे अपनी पनाहों में थोड़ी सी जगह देती, मुझे सहलाती, मुझसे प्यार करती, मुझे अपनी बाहों में लेती, मेरा हाथ थामती। मखमली मौसमों के संग चलते, मखमली मौसमों के संग चलते, मेरे अरमानों को गुलजार करती, मुझे अपना समझती, मगर ये हो न सका, ये हो न सका। काश तुम रोक लेते हमें।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम आप सुन रहे थे रमेश मराठा के साथ। दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे अब आपसे इजाजत।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा।

जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना, जिसे न आप बदल सकती हैं न मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंदी है। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। राजेश खन्ना नहीं रहे। 18 जुलाई 2012, राजेश खन्ना इस दुनिया फानी से कूच कर गए और कह गए, क्या फर्क है 70 साल और 6 मिनट में, मौत तो एक पल है। समान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में मातम की लहर दौड़ गई। राजेश खन्ना ने आशीर्वाद में अंतिम

का जन्म 29 दिसंबर सन 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश का असली नाम जतिन खन्ना था और अपने अंकल के कहने पे जतिन राजेश खन्ना बन गई। एक टैलेंट हॉन्ट के दौरान राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। 10,000 में से सिर्फ 8 लड़के ही चुने गए, उनमें से एक नाम था राजेश खन्ना।

राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत सन 1966 में रिलीज के लिए तैयार हुई, लेकिन उनको जीपी सिप्पी ने राज फिल्म में ब्रेक दिया। इस अदाकार ने सन 1969 से 1975 तक फिल्म आराधना और फिल्म दो रास्ते से अपनी कामयाबी की शुरुआत की। इस दौरान 15 सुपरहिट फिल्में दी और उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिला। फिल्म आराधना के अलावा सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद रोटी, खामोशी और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए।

राजेश खन्ना को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 14 बार नामांकन हुआ था और 3 बार ऐसे बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। राजेश खन्ना ने उस जमाने की लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया, हेमा मालिनी, मुमताज, तनुजा, आशा पारेख, वहीद रहमान, लीना चंद्रावरकर और शर्मिला टैगोर। हेमा मालिनी के साथ राजेश खन्ना ने 15 फिल्मों में काम किया, जबकि एक्ट्रेस मुमताज के साथ 8 सुपरहिट फिल्मों में काम किया।

लड़कियों के बीच राजेश खन्ना की मकबूलियत इस कदर थी कि लड़कियां राजेश खन्ना के फोटो के साथ शादी करती थीं और खून से उन्हें खत लिखा करती थीं। राजेश खन्ना की कामयाबी में संगीतकार आरडी बर्मन और गुलकार किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आरडी बर्मन ने 40 फिल्मों में संगीत दिया।

एक्ट्रेस मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ सुपरहिट जोड़ी के अलावा राजेश खन्ना का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। टीना मुनीम से प्यार की खबर के अलावा अंजू महेंद्र से उनके अफेयर की भी काफी चर्चा हुई। इन चर्चाओं पर खुद ही रोक लग गई जब अचानक सन 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली और ट्विंकल और रिंकी खन्ना के

नीतीश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कुछ चुनाव भी लड़े। लाल कृष्ण अडवाणी को चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी।

दोस्तों आपको याद होगा राजेश खन्ना ने छोटे पर्दे पर भी 2001 में अपनी पराई और इत्तेफाक जैसे सीरियल में नजर आए और यह सिलसिला 2008 में सीरियल भाभी मां तक

राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से भी जाना जाता रहा। सुपरस्टार के दौरान राजेश खन्ना के लिए एक खास कहावत का इस्तेमाल हुआ करता था, ऊपर आकर

80 के दशक के अंत में राजेश की पहली पारी का अंत हुआ। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं।

सन 1994 में राजेश खन्ना ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। 1994 में खुदाई, 1999 में आ अब लौट चले, 2002 में क्या दिल ने कहा और सबसे अंत में वफा सिनेमा घरों में आई।

चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है बहेली हाय।

दोस्तों राजेश खन्ना के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और मासूमियत झलकती थी। राजेश आखिरी सांस तक खूब जिया और जी भर के जिया। उन्हें बेहतरीन और लजीज खाना पसंद था और कभी कभी किचन में जाके खुद खाना बनाते थे। मेहमान नवाजी सीखे तो राजेश खन्ना से। जज्बाती थे, छोटी छोटी बातों को दिल से लेते थे, किसी के दुख को देख नहीं सकते थे, इसलिए तो कहते थे I hate tears।

सन 1991 में 25 साल इंडस्ट्री में पूरा करने पर उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। इन 25 सालों में राजेश खन्ना इंडस्ट्री में वाहिद एक हीरो बने रहे, जिन्हें बतौर लीड रोल 106 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1966 और 1975 के दौरान राजेश खन्ना की 35 फिल्मों ने गोल्डन जुबली का खिताब हासिल किया और सन 1966-91 के दौरान 22 फिल्मों ने सिल्वर जुबली खिताब हासिल किया।

फिल्म गीत गाया पत्थरों के ऑडिशन के दौरान जितेंद्र को राजेश खन्ना ने ही कुछ फिल्मी टिप्स दिए थे। इस तरह वी शांताराम ने जितेंद्र को पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों के लिए साइन किया। राजेश खन्ना ने एक ही फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के साथ काम किया। फिल्म थी जय

फिल्म आपकी कसम के दौरान सन 1974 में बीबीसी ने राजेश खन्ना पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसका टाइटल था बॉम्बे सुपरस्टार। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने कहा था कि महिलाएं राजेश खन्ना की दीवानी थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में घंटों तक खड़ी रहती थी।

संगीतकार प्यारेलाल राजेश खन्ना के साथ काम करने को लकी मानते थे। सन 1969 में फिल्म दो रास्ते और सन 1986 में फिल्म अमृत के लिए संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: तौर पे राजेश खन्ना की फिल्मों में अशोक कुमार, सुजीत कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, असरानी बिंदु, विजय अरोड़ा, रुपेश कुमार, दीना पाठक और एके हंगल जैसे मंच कलाकार नजर आते थे। दोस्तों में शामिल रहे हैं राज बब्बर, जे ओम प्रकाश, प्रेम चोपड़ा, डी रामा नायडू और जितेंद्र। दोस्तों, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं।
1: अमीन साहब, आदाब।
2: आदाब भैया, आदाब।
1: आज का प्रोग्राम समर्पित है राजेश खन्ना के नाम। राजेश खन्ना साहब के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपकी।
2: पहले तो मैं इतना बता दूं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं चाहता था बहुत कि वहाँ स्मशान घाट पहुंचूं, लेकिन इत्तेफाक से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और मेरा बेटा गया मेरी तरफ से वहाँ, लेकिन अफसोस कि वो अंदर घुस ही नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं क्या अर्ज करूं। और मतलब ये इससे पता चलता है कि राजेश खन्ना की यादें और उनकी उनका प्रेम अब तक लोगों के दिल में बसा हुआ है। मैं उसके बाद उनके चौथे पर गया था, कंडोलेंस मीटिंग थी और वहाँ कई लोगों से मुलाकात की, सबके चेहरे उदास थे। और एक गजब की चीज भी मैंने सुनी वहाँ, राजेश खन्ना की अपनी आवाज में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया कि किस तरह वो, ये पता नहीं किसका इंटरव्यू था, उसमें सिर्फ राजेश बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह वो स्टेज की दुनिया से आए और कैसे धीरे धीरे उन्होंने तरक्की की
1: जी।
2: ये स्टेज पर काम करने वाली बात जो राजेश की थी, मेरा ख्याल है वो उनकी अदाकारी को संवारने निखारने में सबसे बड़ी बात थी। वो जब आए तो एक तैयार एक्टर थे, उनको एक्टिंग सीखनी नहीं पड़ी। हाँ, फिल्मों के लिए स्टेज और फिल्म में जो थोड़ा सा फर्क होता है वो एडजस्टमेंट उन्होंने पूरी तरह कर लिया और उसके बाद तो वो अपनी अदाओं से, अपनी खास हरकतों से, अपने खूबसूरत चेहरे से, अपनी मधुर आवाज से वो बस बढ़ते ही बढ़ते चले गए। मैंने उनकी कई फिल्मों में काम इसलिए किया ताकि मतलब इस तरह से कि मैं पब्लिसिस्ट उसका था रेडियो पर
1: जी, जी।
2: और इस लिहाज से मेरी मुलाकात कई बार उनसे होती रही। एक इंटरव्यू सिर्फ मैंने उनका किया और वो कब, जब उनकी शादी होने वाली थी डिंपल कपाड़िया से
1: 1973 में,
2: खैर साल तो मैं भूल गया
1: जी,
2: था
1: जी, जी।
2: और शादी से करीब चार रोज पहले मैं अपना टेप रिकॉर्डर लेकर उनके घर पहुंच गया और उनसे खूब बातें हुई और उन्होंने कहा मुझे कि जब मैंने पूछा कि शादी के बाद क्या डिंपल काम करेंगी फिल्मों में, तो कहने लगे नहीं, वो तो बस ये बॉबी आखिरी फिल्म है उनकी और उसके बाद वो कोई काम नहीं करेंगी क्योंकि पत्नी को घर में रहना और पति के साथ रहना ज्यादा अच्छा रहता है। मगर और उसके बाद वो रहने भी लगी उनके साथ, दो बेटियां भी पैदा हुई, मगर न जाने क्यों उसके बाद क्या हुआ कि बात थोड़ी बिगड़ी
1: जी।
2: और वही बात हुई जो कि बॉबी के गीत में बॉबी की हीरोइन डिंपल ने कहा था अपने हीरो ऋषि कपूर से कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं महके चले चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो
1: जी।
2: और वो चली गई महके और दोनों अच्छे कलाकार अच्छे लोगों के बीच एक दीवार सी बन गई। इस दीवार की वजह से आखिर तक, यानी राजेश खन्ना के आखिरी दिनों तक ये दोनों अलग रहे। और जब वो बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटल में आना जाना शुरू हो गया, तो एक अच्छी पत्नी की तरह डिंपल फिर उनके पास चली गई और उनकी देखभाल भी की, उनके हॉस्पिटल ले जाने लाने में, वहां से लाने में उनका और उनके दामाद अक्षय का बहुत बड़ा हाथ था
1: जी जी।
2: और इस तरह से मामला चलता रहा कि आखिर सांस रुक गई और एक बहुत बड़ा कलाकार जो था वो खत्म हो गया।
1: अमीन साहब, जिन दिनों आप सिलोन में थे उस वक्त कोई ऐसी कोई याद उनके साथ जुड़ी हुई है?
2: याद तो फिल्म पब्लिसिटी के थ्रू रहा या फिर वैसे दोस्ती के जरिए और उनके दोस्तों से दोस्ती के जरिए, मसलन आर डी बर्मन बड़े दोस्त थे उनके, और
1: किशोर
2: आर डी
1: कुमार,
2: मेरे भी दोस्त थे भाई की तरह,
1: किशोर कुमार,
2: किशोर कुमार भी,
1: जी जी जी
2: तो इन सब से मिलना और उनके बारे उनसे बात करना राजेश की, ये होता होता रहता था। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो कि मेरे प्रोग्राम गीतमाला से ताल्लुक रखती है, और वो ये कि राजेश वैसे तो आते ही छाने लग गए थे और उनके गीतों ने भी धीरे धीरे काफी धूम मचानी शुरू कर दी थी, लेकिन आगे चलकर जब आराधना में उन्हें किशोर कुमार की आवाज मिली पहली बार, तब तक तो किशोर गाया करते थे सिर्फ अपने लिए या देवानंद के लिए, लेकिन आराधना में राजेश खन्ना के चेहरे पर जब किशोर कुमार की आवाज गूंजने लगी, उनके लब हिलने लगे किशोर की आवाज पर, तो ऐसा तहलका मचा कि बस करीब करीब सभी गीत टॉप हिट हो गए, और राजेश खन्ना न सिर्फ अपनी अदाकारी के जरिए बल्कि अपने खूबसूरत गीतों के जरिए भी लोगों के दिल में और गहरे उतरते चले गए।
1: कहा जाता है कि लड़कियां उनके फोटो से शादी करती थी, ऐसा?
2: बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी कि कुंवारी लड़कियों की के तो वो फेवरेट थे ही, लेकिन बूढ़ी औरतों के यानी अम्मा नानियों का भी ये हाल था कि वो बड़ा प्यार करती थी, जब उनको अपना बेटा कहती थी, समझती थी, दुआएं करती थी उनके लिए, और छोटे बच्चे भी खूब मजा लेते थे उनकी अदाकारी का। तो वाकई वो पहले सुपरस्टार बने फिल्मी दुनिया के, यानी उनसे पहले तीन तो थे ही जो धूम मचा रहे थे, दिलीप और राज और देव, लेकिन उनके बाद जो सुपरस्टार कहलाए गए वो यही थे।
1: अमीन साहब, आखिरी दिनों में कभी आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला?
2: नहीं, मेरा तो ताल्लुक काफी वर्षों से बिल्कुल ही नहीं रहा था, बल्कि मेरा ही क्यों, किसी का भी ताल्लुक नहीं रहा था उनसे। मैंने देखा टीवी पर देखा कि एक बार वो किसी फंक्शन में आए थे और कुछ बोला था उन्होंने, और वो कविता जो उन्होंने दाग में बोली थी ना
1: जी जी,
2: उसको एक नए अंदाज में जरा जोश के साथ पेश किया था, अमिताभ बच्चन कंपेयर कर रहे थे उस शो को
1: जी जी,
2: लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया उनसे, बल्कि वो खुद अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान के लोगों से जरा दूर ही चले गए थे, एक हर्मिट से बन गए थे वो, और मुलाकातें लोगों की जरा कम ही होती थी, बीमार भी रहते थे उनके, उनका चेहरा आपने देखा ही होगा, दाढ़ी
1: जी, जी, जी
2: और गोया दाढ़ी छुपा रही थी उनके चेहरे का मुरझाना, तो बहुत बहुत बीमार, बहुत बूढ़े से लगने लगे थे वो।
1: ये भी उन दिनों कहावत थी कि ऊपर आका और नीचे काका।
2: ये मैंने नहीं सुना, लेकिन ये सही है कि सब उन्हें काका कहते थे, मैंने उन्हें काका नहीं कहा कभी, क्योंकि वो थे मुझसे जरा छोटे
1: जी
2: तो मैं राजेश जी का कहा करता था उनको।
1: अमीन साहब, किसी गाने के जरिए आप उनको याद करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के लिए?
2: जिंदगी का सफर है ये ऐसा सफर, कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं, बहुत दिल को छू लेने वाला गाना था ये, और मेरा ख्याल है उन्हें उनकी याद में ये गाना जरूर बजाना चाहिए
1: जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्या आपको मालूम है राजेश खन्ना के आखिरी अल्फाज क्या थे?
1: किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्हें दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा जमीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बारे में आपसे मुलाकात हुई। किसे अपना कहने कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर आपका ये प्यार था, आप वहां पर मौजूद हुए उतनी भारी संख्या में, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: जाती तौर पे राजेश खन्ना से मेरी मुलाकात पहलगाम कश्मीर में हुई थी फिल्म रोटी की शूटिंग के दौरान, और मुझे आज भी याद है। कश्मीर के दिल फरीब और हसी मनाजिर, खूबसूरती से वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। मेरी और उनकी बातचीत के दौरान वो अपने सिर को अपने ही अनोखे अंदाज में हिलाते रहे।
2: अच्छा, ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना। टन
0: और वही उनका अंदाज हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलता रहा।
2: कदमों के निहार है तो तुमको मुझसे प्यार है।

2012 दिन के 1:40 पे मौत ने दस्तक

आई राजेश को अपने साथ ले गई। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता, पर यह भी अपनी जगह सही है, आनंद मरते नहीं। पसीना मौत का माथे पे उतरा है, आई न लाओ हम अपनी आखिरी तस्वीर उतारेंगे।

0: सुनते हैं कार्यक्रम गुफ्तगू, और आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे नरेश शर्मा, और आज के मेहमान है रंगकर्मी हरियाणवी कलाकार शिव किरमच।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, एहसास अपनेपन का, और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणवी कला मंच के एक मंझे हुए कलाकार श्री शिव किरमच जी। शिव किरमच जी उभरते हुए विख्यात गायक सिद्धू किरमच के पिता हैं, जिनकी एक एल्बम अभी कुछ दिन पहले आप सुन रहे थे नैना नाम से। ये एल्बम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई है, और इन्हीं सिद्धू किरमच जी के पिता शिव किरमच ये स्वयं भी एक कलाकार हैं, या यूं कहा जाए कि कलाकारों का परिवार है। ये आज हमारे साथ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो शिव जी, रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: और हम सबकी खुशकिस्मती है कि हरियाणी रंगमंच को एक अलग पहचान देने वाले, जिन्होंने अपनी कला से हरियाणी रंगमंच पर एक अलग छाप छोड़ी है, वो कलाकार आज हमारे बीच में मौजूद है, जिनका शिव किरमच मैंने आपको नाम बताया। आइए जानते हैं इनकी जीवन के कुछ पहलू और इनके दिल की बात हम आज इन्हीं से जानेंगे। तो देखते हैं कि क्या है शिव किरमच जी की कहानी, सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। तो शिव जी, आप ये बताइए कि कला के क्षेत्र में आपका रुझान किन किन कलाओं में है?
2: जी मैं बताऊं, कला में रुझान मेरा बचपन से ही था, लेकिन मेरा शरीर दुबला पतला, कद मेरा छोटा, और मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स था कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। लेकिन जैसे जैसे मैं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की ओर गया, मेरा ये रुझान उभरने लगा, निखरने लगा, और मैं कोशिश करने लगा।
1: मैं दोस्तों आपको ये बता दूं, जो दर्शक और श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कि शिव किरमच जी अध्यापन कार्य से संबंधित रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं, और सेवानिवृत्त होने के पश्चात में अब ये अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने जा रहे हैं कला क्षेत्र के बीच में। जैसा कि इन्होंने बताया कि कद काठी छोटी होने की वजह से ये मतलब एकदम से समर्पित तो नहीं हो पाए, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा, जितना हमने इनको जाना और पहचाना है, आप इनके बारे में इतना जरूर कह सकते हैं कि ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाल। और देखते हैं कहां कहां इन्होंने बड़े धमाल मचाए हैं, और भविष्य में कला के प्रति इनकी क्या क्या और योजनाएं हैं।
2: जी मैं बताऊं सर आपको, मैं झिझकता था मंच पे जाते हुए भी। जैसे मैंने पहले MA किया, उसके बाद मैंने BEd किया। BEd में मुझे थोड़ा थोड़ा सा अंदर मन में रहता था कि कुछ मैं मंच पे बोलूं, और मैं फिर कोशिश करने लगा, कभी चुटकुले सुना दिए, कभी कोई तुकबंदी सुना दी, और धीरे धीरे ये बात गंभीर रूप लेने लगी। और संयोग ही कहूँ, जैसे कॉलेज में जब मैं पढ़ता था करनाल में, तो बहुत सी फिल्में देखता था। फिल्में देखकर एक एक्टिंग का जुनून सवार होता था, मैं कैसे करूँ, लेकिन मैं कर तो पता नहीं था, लेकिन मैं करने की कोशिश करता था। संयोग से 2009 में कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर नाम की एक संस्था खुली, और वहां मुझे एक छोटा सा करेक्टर करने का मौका मिला। नाटक था जिस लाहौर ने देखा, जम्याई ने। कुछ लोगों ने पसंद किया, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, और धीरे धीरे मैं 2009 से और आज तक कंटिन्यू नाटकों में काम कर रहा हूं, चाहे वो सैया भाई कोतवाल हो या जिस लाहौर ने देखा या खबरदार, यानी कि बहुत से नाटक, और इससे मेरा व्यक्तित्व तो भी निखरने लगा। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, पहचानते थे, वो मुझे जानने लगे, पहचानने लगे।
1: वाह जी, तो ये तो इनकी कला का एक पहलू रहा है जो ये बता रहे हैं, एक्टिंग जी। एक्टिंग के विषय में इसके साथ साथ में संगीत में भी आपकी रुचि रही है क्या?
2: संगीत मैं गा नहीं सकता, लेकिन मैंने कुछ गीत लिखे हैं, हरियाणवी में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे, तो ये रुचि भी तुकबंदी करने की। जैसे मैं बीए फाइनल में हुआ, फिर एमए में हुआ, तब मेरे अंदर था ये भी कि मैं कुछ कविताएं लिखूं। और आज आप सबके स्नेह से मेरा एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है जिसमें 50 कविताएं शामिल हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि जो जो बातें मैंने आज से 40 साल पहले सोची थी, मेरा काव्य संग्रह हो, मैं नाटकों में काम करूं, मैं फिल्मों में काम करूं, ये सब मेरे सपने धीरे धीरे प्रभु की कृपा से पूरे होते चले गए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आपका अभी नाटक संग्रह प्रकाशित हुआ है, क्या आप हमारे श्रोताओं को अपने किसी कविता की चंद लाइनें सुनाना पसंद करेंगे?
2: बिल्कुल बिल्कुल सुना दूंगा, और ये मुझे पसंद भी है और मुंह जबानी मेरे याद भी है। जब मैं 92 में बीएड का विद्यार्थी था तब मैंने ये तुकबंदी की थी, वही कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ।
1: जी, जी।
2: शीर्षक है संभलो संभलो, संभलो संभलो मेरे अजीज युवाओ, क्यों पांव कुल्हाड़ी मार रहे, पढ़कर बुरे व्यसनों में क्यों जीवन भाग उजाड़ रहे, आज पढ़ते ही नजर कुछ युवाओं पे मेरा मस्तक झुक जाता है, देख इनके दुष्कर्म दिल भी दहल जाता है, नैतिक पतन तो कर चुके क्यों शारीरिक पतन भी करते हो, पीकर मदिरा लेकर ड्रग्स क्यों जीवन कलंकित करते हो, चरित्र का तो मैं नाम नहीं क्यों सभ्यता को भी छोड़ दिया, माता पिता व गुरुजनों से तुमने क्यों नाता तोड़ लिया, कहता है शिव संभल जाओ, कहता है शिव संभल जाओ, वरना फिर पछताओगे, दो दिन की मौज है प्यारे, हरदम रोते पाओगे, हरदम रोते।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब,
2: धन्यवाद।
1: तो ये जो श्रोताओं, आप कलम का जौहर आपकी नजर के बीच में आया शिव किरमिश जी का, समझते हैं आपके कलाकार अपने मन की भावनाओं को अपनी कलम के मार्फत हम सबके बीच में रखते हैं। और इन्होंने भी तो बहुत बात अच्छी बात कही है कि ये जो आजकल एक चलन सा चल पड़ा है नशों का, नशों के विरुद्ध आगाह किया है, बहुत सुंदर रूप से अपने संदेश को देने की इन्होंने कोशिश की है। समय रेडियो के ऊपर अक्सर कम होता है, हम प्रयास करेंगे कि कम समय के बीच में इनके विषय में ज्यादा से ज्यादा जितना जान पाए उस जानकारी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें। तो एक पहलू और भी जिंदगी का होता है
2: जी।
1: वो होता है कि एक तो आपने बताया जिस तरह से कि अभी ड्रग्स की बात
2: जी,
1: यानी जिसको हम नशे के ऊपर कह सकते हैं
2: जी,
1: एक है प्यार मोहब्बत की बात
2: जी।
1: तो क्या मैं जान सकता हूं कि आपके साथ में क्या कोई ऐसी अनहोनी हुई?
2: अनहोनी की बताऊं, ये मन में ख्यालात तो सबके ही आते हैं, जब मैं जैसे 11वीं 12वीं का विद्यार्थी रहा, 13वीं 14वीं का विद्यार्थी रहा, मन में एक ऐसी इच्छा तो होती है इस तरह की एक कहानी बने, और कविताएं तभी लिखी जाती हैं, तभी मन के भाव भी व्यक्त हो पाते हैं। तो लेकिन मैं सकल सूरत का तो इतना सुंदर सा था नहीं, ऐसा ही था, काम चलाऊ सा था, तो फिर ये बस ख्यालों में ही ये पुलाव पकती रही, और हो सकता है जिंदगी में थोड़ा बहुत हुआ भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
1: नहीं, आप इसको स्पष्ट रूप में बताइए ना कि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ, हो सकता है नहीं, जब आपके साथ में हुआ तब आप ये नहीं कह सकते कि हो सकता है, तब आप ये कहिए कि हाँ जिंदगी के बीच में मेरे साथ में
2: हाँ,
1: प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला, कुछ सीढ़ियां आपने चढ़ी।
2: हाँ, चढ़ी हूँ, ये पढ़ते टाइम जरूर ऐसी।
1: क्या आज भी धड़कता है?
2: हाँ, कल्पना में तो 100% धड़कता है, और तभी मैं ये जैसे गीत लिखता हूँ तो कल्पना भी तभी अच्छी कर पाता हूँ जब वो ख्याल आते हैं, इस तरह के कुछ जो अनुभव रहे हैं उन्हीं के आधार पे फिर कुछ पंक्तियां गढ़ी जाती हैं।
1: श्रोताओं, मेरी शुभकामनाएं शिव किरमिश जी के साथ में हैं, क्योंकि जो बातें अभी आप किरमिश जी के मुखारविंद से सुन रहे थे कि अभी भी इनका दिल किसी और के लिए धड़कता है, मैं समझता हूँ कि ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार सिर्फ आप लोग ही नहीं सुन रहे, शिव किरमिश जी के परिवार वाले भी सुन रहे हैं, और इसीलिए मैंने पहले वो कह दिया कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। सर, हम चलते हैं एक दूसरा रुख आपके जीवन का, जो दूसरा पहलू है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं
2: जी।
1: सुना है आप एक बहुत बहुरंगी बहुमुखी थिएटर के कलाकार भी है, क्या ये सच है?
2: जी, ये भी संयोग ही कहूं सर, 2009 में जैसे वहाँ हरियाणा कला परिषद का एक कार्यालय या एक यूं कहूँ एक थिएटर का एक ऑफिस वहाँ खुला, तो किसी ने, एक डायरेक्टर थे वीरेंद्र जी, तो वो कुछ चयन कर रहे थे, ये इसकी नायिका रहेगी, ये नायक रहेगा, और मैं वैसे ही दर्शकों में बैठा था, तो मेरी शक्ल सूरत देख के उन्होंने अंदाजा लगाया, अलीमुद्दीन एक चाय वाले का करेक्टर था, पूछने लगे भाई शिव भाई तू कर लेगा? अब मेरे मन में तो अंदर तड़प थी कि कुछ नया करूं, और मैंने कह दिया हाँ, वो तो मेरे मुझसे रहा नहीं था, लेकिन मैंने हाँ कर दी। फिर उन्होंने 5-6 महीने रिहर्सल करवाई, कहने लगे भाई शिव कुमार आपके बस की बात नहीं है, ये आप चले जाओ, आप तो शर्माते, वो तो यहाँ तो लड़कियों से मिलना भी पड़ेगा, गले भी लगना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये तो मुश्किल काम है, मैं वैसे भी अध्यापक हूँ और मुझे थोड़ा बुरा सा लगेगा, लोग भी क्या कहेंगे, लेकिन मेरे अंदर था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा, और सीखते सीखते वो पहला ही नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या, जमया ही नहीं, वो पूरे भारत में मंचित हुआ, और पूरा चाहे वो इलाहाबाद, उदयपुर, शिमला, चंडीगढ़, पटियाला और हरियाणा के शहर करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, और वो पूरा हिट होता चला गया, और मुझे भी फिर थोड़ा सा नाम, लोग कहने लगे भाई ये जचता है बंदा अलीमुद्दीन के किरदार में, और इस तरह मेरी जो भावनाएं हैं वो और उफनती गई, और मैं फिर अगले नाटक में, और आज कुरुक्षेत्र में मतलब मैं ये निसंकोच कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा नाटक मैंने किए हैं, अभिनय मैंने किया है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो एक नाटक जिसका शीर्षक था जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति ने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ।
2: नहीं नहीं, सीखने का मतलब सर कि मैं अभिनय सीख जाऊंगा और इनसे भी मैं थोड़ा खुल के बात करने लगूंगा। पहले एक साल तो मैं बहुत कम ही करता था, फिर वो मैंने रिकॉर्ड भी सारे तोड़े, फिर मैं बातें भी खूब करने लगा।
1: देखिए, ये सिर्फ जो बातचीत मैं आपसे कर रहा था, ये अपने श्रोताओं को जो बात बता रहा था वो सिर्फ एक मनोरंजन मात्र के लिए थी, वरना शिव किरमिच जी एक बहुत मर्यादित और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे मन में इनके लिए विशेष बहुत सम्मान है। आप हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों के लिए इतनी बातें कह रहे हैं, हम देखिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये प्रोग्राम जो हम आज यहाँ पर कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है वो जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि नाटक, आपने बताया कि नाटक जैसा कि जिस लाहौर में वेख्या वो जम्या ही नहीं, आप ये बताइए कि नाटक ने आपके जीवन के बीच में क्या परिवर्तन ला के दिया है?
2: बहुत बड़ा परिवर्तन कहूंगा इन नाटकों से, क्योंकि मेरा जो व्यक्तित्व था वो ऐसा ही था, काम चलाओ, मुझे मतलब एक अपने अंदर ही एक कॉम्प्लेक्स रहता था, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं मंच पे नहीं बोल पाऊंगा, मेरी हिंदी ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगी, इन सब बातों का निवारण हुआ नाटक से। और अब मैं सच बताऊं, कहीं गाड़ी में डीजल भी डलवा रहा होता हूं, लोग मुझे जानते हैं, सर आप तो वो नहीं हो कल टीवी पे आ रहे थे, मैंने कहा हाँ सर, आपको तो मैंने अखबार में फोटो देखा था, आप सैया भाई कोतवाल में कोतवाल बने हुए थे, और इतना अच्छा लगता है। और स्कूल की मैं बताऊं, चाहे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी या और जितने भी अधिकारी, वो सब मुझे मतलब एक बड़े रूप में देखते थे, भाई ये अध्यापक प्राध्यापक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक रंगमंच का खिलाड़ी भी है, ये मंच संचालन भी, क्योंकि मेरी झिझक वो सब टूट चुकी थी, इमरजेंसी में मैं मंच संचालन भी करता, मैं कविताएं भी सुनाता, चुटकुले भी सुनाता, सब काम मैं करने लगा, और मेरी वाहवाही होने लगी, चाहे वो जिला कुरुक्षेत्र हो या जिला जींद हो, हर जगह जाके नाटकों का खेलना, चुटकले। आपको बता दूं, एक बार कुरुक्षेत्र में ही पूरे हरियाणा के चुटकलों का एक कंपटीशन हुआ, प्रतियोगिता हुई, जिसमें ऊपर के 10 चुनने थे, और आप सबके स्नेह से उन ऊपर के 10 में मैं रहा, मुझे 5,000 रुपये का पुरस्कार और स्मृति चिन्ह वगैरह वो दिया गया, और एक बड़ा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें फिर मैंने अपने जोक्स, अपने चुटकुले हरियाणवी में सुनाए।
1: वाह, हरियाणवी कला के, हरियाणवी संस्कृति के, हरियाणवी परंपरा के पारंगत कलाकार श्री शिव किरमिश जी बता रहे थे अपने जीवन की कुछ झलकियां, तो इसके साथ साथ हम जैसा कि जानते भी हैं कि इनके पुत्र सिद्धू किरमिची जो विख्यात गायक हैं और आगे भी अभी उनकी यही परियोजनाएं हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज रेडियो वितस्ता के माध्यम से
2: जी।
1: आप नवोदित कलाकारों को, चाहे वो गायक हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो थिएटर के कलाकार हो, या जो भी कला क्षेत्र से संबंधित हो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं यही संदेश दूंगा, जो उभरते कलाकार हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, वो संयम से और शिद्दत से काम करें और अपने आप को हवा में ना उड़ाएं कि दो दिन काम किया और मैं तो बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा या मैं मुंबई फिल्मों में काम करने चला जाऊंगा। पहले उस बात को अच्छे से सीखें, अपने अनुभव एकत्रित करें और फिर कुछ आगे की सोचें। यूं नहीं भाई 5 दिन एक प्ले में, एक नाटक में काम किया, वो भी एक डंडा सा लेके खड़े हुए, और 7वें दिन कह रहे हैं मैं मुंबई का रुख कर रहा हूं, मैंने थिएटर तो बहुत कर लिया, या मैंने रियाज कभी किया नहीं, और गायकी में एक वैसे ही ये आजकल मशीनी युग है, वो अपनी ट्यूनिंग टैनिंग करके और अपना सुरताल सा थोड़ा ठीक कर लिया और कहने लगे हाँ मैं भी अच्छा गायक बन गया। इसके लिए जरूरी है रियाज करें, सीखें, अच्छे जो गायक हैं, जो भारत में इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं, उनको सुने और फिर उनको अपने जीवन में उतारें और कोशिश ईमानदारी बरतें, मेहनत करें, बिना मेहनत के फल मिलने वाला नहीं है। आज जो ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ये इतनी जल्दी नहीं कि मैं कल रंगकर्मी बना और आज आपने मुझे रेडियो वितस्ता पे बुला लिया। इसके पीछे मेरे कम से कम 30 साल तो जरूर गए हैं, और मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका और सभी सुनने वालों का कि मुझ जैसे छोटे से आदमी को आप सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: देखिए, अभी जो आपने संदेश उभरते हुए कलाकारों को दिया
2: जी,
1: कि जरा से सफलता पाने पर हवा में ना उड़ने लग जाएं और अपने आप को मत भूलें, रियाज करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, और थोड़ी सफलताओं से बहुत ज्यादा बड़ी अभिमान में ना आए
2: जी।
1: आपकी एक बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि कहते हैं कि बड़े कमजर्फ हैं ये गुब्बारे
2: जी,
1: जो चंद सांसों में फूल जाते हैं।
2: वाह,
1: बड़े कमजर्फ हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं।
2: बहुत खूब।
1: तो मकसद ये है कहने का, आप कहीं पर भी रहिए, अपनी औकात को मत भूलिए, अपनी जमीन को मत भूलिए, अपने पांव को मत भूलिए, क्योंकि आखिर टिक कर तो जमीन पर ही रहना है। हमारे साथ आज शिव किरमिची जुड़े हैं, और मैं इनसे, क्योंकि रेडियो के ऊपर हैं हम लोग, रेडियो वितस्ता पे इस प्रोग्राम से इनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, मैं ये चाहूँगा सर आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा पसंदीदा गीत आपका जो आपको दिल के बहुत करीब हो, यूँ कह लीजिए कि आपके दिल की आवाज़ हो, कोई ऐसा गीत हमें बताइए, गुनगुना के सुनाइए, फिर हम वो गीत दर्शकों को आपकी फरमाइश पर आपकी तरफ से पेश करेंगे।
2: जी, मैं गुनगुना तो नहीं सकता, लेकिन रेडियो
1: आप कहकर सुना दीजिए।
2: हाँ, कहकर, मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है
1: जी,
2: और किशोर कुमार के गाने बहुत, रेडियो इतना सुना है मैंने बहुत ज्यादा, और जो जिंदगी से जुड़ा होता है, जैसे मैं कई बार अपने आप को जोड़ देता था गीतों के साथ इस तरह का, तो किशोर का वैसे तो आप कोई भी बजा दो, लेकिन मुझे तो जैसे मेरी जिंदगी पे जो फिट बैठता है, मैं कई बार सुन लेता हूं, या तो मैं अपने दोस्त को 2 गाने बताऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा, वो उनमें से एक बजा देना सर। एक तो मेरी जिंदगी जैसे टूटी फूटी, भाई कुछ लोगों के पांव नहीं होते, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, अवतार फिल्म का गाना है सर, ये मेरे जिंदगी के बहुत करीब है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुप्तगु और आज चर्चा हो रही है शिव किरमच जी से, जो हरियाणवी कलाकार और रंगकर्मी हैं।
1: से मेरे गांव में एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अब वो नहीं रहे दुनिया में, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे क्लास फेलो थे वो, लेकिन वो मुझे चाहते थे कि मैं कुछ सीखता रहूं, ऊपर उठता रहूं। वो अब नहीं है, उनके लिए तो मैं अक्सर यही याराना फिल्म का तेरे जैसा यार कहा।
2: तो श्रोताओं, हम जहां पर आज शिव किरमच जी ने हरियाणा की संस्कृति को इतना कुछ दिया है, हम आज रेडियो की दस्ता की तरफ से शिव किरमच जी के लिए समर्पित करते हैं किशोर कुमार जी के ये गीत, जो इनके पसंदीदा गीत हैं। और इन्हीं गीतों के साथ में मैं आपको छोड़े चलता हूं रेडियो की दस्ता के इस परिवार से, और साथ में मैं धन्यवाद करता हूं शिव किरमच जी का कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, हमारे श्रोताओं से बातचीत की, कुछ अपने दिल की बातें कहीं, कुछ छुपा भी ली, जो हम मौका लगने के ऊपर फिर किसी और कार्यक्रम के बीच में इनसे ज़रूर सुनेंगे, कोशिश करेंगे इनके दिल तक दस्तक देने की, क्योंकि जब तक दिल तक दस्तक नहीं होती ना, तब तक बात पूरी निकल नहीं पाती। तो आज अब इस मोड़ के ऊपर इन गीतों के साथ ही अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा आपको किसी और प्रोग्राम के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का, धन्यवाद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुप्तगु। आज बात कर रहे थे नरेश शर्मा और आज के मेहमान थे शिव किरमच, जो रंगकर्मी है और हरियाणवी कलाकार है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है।

0: अंबाला का अपना रेडियो।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

0: खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।
1: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta Hamsafar Zindagi Ka। Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India।
3: Tochu Bozan FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूँ।
4: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: तुसी सुन रहे हो अम्बाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
1: रेडियो वितस्ता
3: असले पौन पटाके
2: सुन मेरे दिलदारा
1: मेनू 90.0 में।

सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: ताजमहल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है श्रीमती हरजीत कौर लांबा, प्रस्तुतकर्ता आजय किरने।
1: कार्यक्रम घर परिवार के आज के अंक में मैं किरनी सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं और हरजीत लांबा जी आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार और किरनी जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले। एक नारी अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि आज चर्चा का विषय है नारी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ हरजीत जी, आप बेटियों यानी नारी की व्याख्या किन शब्दों में करोगे?
2: देखो, जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है। बेटी के बिना कोई परिवार पूरा नहीं होता। बहुत खुशनसीब हैं वो माता पिता जिनके परिवार में बेटी होती है। आपकी बेटी हमेशा आपकी स्थिति को समझती है। अच्छे बुरे का बेटियां परिवार के लिए उपहार की तरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बेटी चाहते हैं ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। कई लोग बेटी को बोझ समझते हैं लेकिन ये सच नहीं है। बेटियां उनके लिए वरदान होती हैं। यही बेटी नारी की भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ, जो बेटी है वो घर को स्वर्ग बनाती है। हर एक चाहता है कि उसकी एक बेटी हो। बेटी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अमूल्य रचना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नारी समाज में अनेक रिश्ते निभाती है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, दादी का हो, आपका क्या मानना है? कृपया विस्तार में बताइए।
2: परिवार में बेटी और बेटे का समान रूप से महत्व होता है। वर्तमान समाज में भेदभाव को मिटाकर बेटियों को महत्व देना चाहिए। बेटियां ही घर की संचालन शक्ति होती हैं। माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में उनका सर्वांग जीवन त्याग एवं सेवा की लंबी गाथा है, उसका बहुत वर्णन है।
1: जी हाँ, एक नारी जो है बहन का, माँ का, पत्नी का, दादी का, सारे रिश्ते बखूबी और बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। अब हरजीत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आज की नारी है, नारी का वर्तमान जो स्वरूप है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: देखो, नारी समाज में भी सबसे आगे आई है। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बेटियां विराजमान हैं। पुराने समय में लड़कियां बहुत समझी जाती थी लेकिन आज का युग नारी युग है।
1: जी हाँ, मेरी राय भी यही है। मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान की नारी है वो आर्थिक की दृष्टि से आजाद हो, शिक्षित हो, पुरुष की दास्तां से मुक्त हो, दोनों यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी,
2: देखो किरनी जी, हमारे समाज में जागरूकता आई है, भ्रूण हत्या अब कम हुई है, गवर्नमेंट ने भी कानून जो है बना दिए हैं, बहुत सख्त कानून बनाए हैं कि बेटियों को जन्म से पहले आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, और रेशो में भी लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर हो गई है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है।
1: जी हाँ, इसीलिए हम सबको एक नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी से ही जीवन है। जी, आपकी कविता से मुझे भी दो लाइनें याद आ गई। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। आप बताओ आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
2: उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कराते। किरण जी मुझे ये बहुत पसंद
1: है। चलो आपके पसंद का ये गाना हो जाए। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है और इसकी जो पहली दो लाइनें हैं जो कश्मीरी में है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि बादशाह से खाना मजगूर दुमे रक्षत मैंने बजानो। अब सब सुनने वालों को और आपको हम ये वाला गाना सुनाते हैं।
2: वाह खूब।

0: बहुत ही मनमोहक गाना था, हमने और लिस्नर्स ने सुना। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आज के मौसम के हिसाब से आप कौन सी रेसिपी श्रोताओं को आज बताने वाले हैं?
1: आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठंडा हम खाने को भी मन करता है और पौष्टिक भी है। आजकल किरणी जी बच्चे जो हैं वो फल फ्रूट कुछ चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। तो छोटी सी रेसिपी है, उसमें घर में फ्रूट पड़े रहते हैं जैसे सेब, अनार, केला, कोई भी आप ले सकते हो। उनको छोटे छोटे काट कर बाउल में डाल लो, घर की मलाई पड़ी होती है उसको फेंट लो, अगर नहीं है क्रीम ले आओ, उसमें शहद मिलाकर उनको मिक्स करके आप बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, ये व्रत में भी खा सकते हो आप।
0: जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और कम समय में बनने वाली, मैं भी आज ही ट्राई करूंगी। अब आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
1: तो क्यों ना वो लगाया जाए, अपने पुराने टाइम का गाना, ओ बाबुल प्यारे।
0: जी हाँ, आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पेश है बाबुल प्यारे।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप कोई घरेलू नुस्खा बताए जो सबके लिए कारगर हो।
2: हाँ जी किरणी जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि स्किन के लिए, खुजली के लिए, जैसे नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के लगाएं कि उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा।
1: जी हाँ, हमारे श्रोताओं को कुछ तो इससे फायदा मिलेगा। मैं भी एक घरेलू नुस्खा आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हल्दी। हल्दी तो हर एक किचन में मिलती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगे तो गर्म दूध में हल्की फुल्की हल्दी डालकर पिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो मसल्स में आई सूजन में राहत दिलाती है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हमारे ये दोनों घरेलू नुस्खों से शायद हमारे श्रोताओं को कुछ हेल्प मिले।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आज अंबाला कैंट के पहले FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आए हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: हमें बहुत खुशी है कि अंबाला कैंट को अपना FM स्टेशन मिला है, जिसके माध्यम से हम सभी अंबाला वासी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचा सकते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी हो। मैं हमेशा FM सुनती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबाला में मेरे घर के पास FM खुल जाएगा, कि जिसको मैं बड़े मन से सुनती हूँ। अब
1: हरजीत जी, अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अब लास्ट में आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
2: आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।
1: आइए, आपको हरजीत जी के पसंदीदा गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। इसको प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। रिकॉर्ड एडिट एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी,
1: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, अरे थोड़े से भाई टूटे ना।

कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं, क्या जीना और क्या मर जाना, ऐसा होता है याराना। अरे छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है, अपना जो कुछ है सब

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विथस्ता हमसफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
3: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन दो।
2: रेडियो वितस्ता
3: असले पौन पटाके
2: सुन मेरे दिलदार 90.0 में।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रे

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखा।

शम्मी ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मानी।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: रफीक की आवाज उन पर सटीक बैठती थी। अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
1: कोई मुझे जंगली कहे कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे

गीता बाली का 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जी

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आन।
1: तुम जाओ, अंजू मैं यहीं ठहरता हूँ।
0: क्यों? उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो।
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो,

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है प्रोग्राम शामे गजल, एपिसोड 2, कलाम भारती रैना। पेश कर रहे हैं आरजे किरणी।
2: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैनावारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

0: नजर हूँ मैं, कुदरत की तराशी हुई गजल हूँ।
1: जिंदगी के कुछ पल है ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 705641301 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 7। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है दोस्ती और रिश्ता। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। कार्यक्रम लिखा और निर्देशित किया आरजे किरनी ने।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का रेट्रो हिट्स है दोस्ती और रिश्ते स्पेशल। दोस्तों और अपनों के रिश्ते ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आज हम उन्हीं रिश्ते के अनमोल जज्बात को महसूस करेंगे। जब दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता है तो फासले और वक्त सब बेकार होता है।

दोस्ती में होती है ईमानदारी, इसमें दुनियादारी नहीं होती। दोस्ती एक राज है जो खुलता नहीं, ये वो दीपक है जो बुझता नहीं।

रिश्ते और दोस्ती जिंदगी के सबसे अनमोल तोहफे होते हैं। इन गीतों और शायरी के जरिए इन जज्बात को महसूस करते रहिए और अपने दोस्तों और अपनों के साथ ये सफर यादगार बनाइए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 7। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था दोस्ती और रिश्ता। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। इस कार्यक्रम को लिखा, प्रस्तुत किया और निर्देशन दिया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: उस पथ में

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

होती सिर्फ पानी पे खींची लकीरें, इंद्रधनुष की धूप रेतीले आशियाने, वहमो गुमा की बुनियाद पे खड़े, उम्र के इस पड़ाव पे तुम्हारे लौटने की उम्मीद सी जगी है।

जब दोरानी सफर पीले पत्तों के मौसम में तुम्हारी मासूम मुस्कान भरी अदाएं शामिल हों। ए उरको मत जाओ यूं ही हमें छोड़कर बेवजह, कभी कभी साथ तो चले इन काली घटाओं के हमराह, अपनी नींदों के बादल शायद भीग जाएं।

मौसम है सर्द, बर्फीली हवाओं का एहसास, खामोश वादी में माजी कुछ कहना चाहता है, मुझको मुझे से अलग करना चाहता है। रूह की फरियाद यहां सुने कौन, क्या बीते पल लौट आएंगे, क्या समय की इन तेज धाराओं से हमें भी गुजरना होगा। साथ चलने का वादा निभा न सके, पास रहने की हसरत लिए बैठे हैं।

जाने ये कौन मेरी रूह को छू कर गुजरा, हमेशा मेरे साथ रहते भी कभी मेरे पास न रह सके। जाने ये कौन इन गुप अंधेरों में अपनी नर्म नाजुक मुलायम उंगलियों से मेरे बालों को सहलाते गए। देर रात तक मुझे अपने आंचल में छिपाते गए। माजी की यादें सुनाकर रुलाते गए। कटा कटा सा जीवन धुंधले ख्वाबों के आगोश में तुम्हें तलाशने की नाकाम कोशिश, पर ये ख्वाब बनते हैं शायद टूटने के लिए, हां सिर्फ टूटने के लिए।

मैं कई युगों से बैठा हूं, चांद से कोई उतरा नहीं। तुमने जो कहा था आऊंगी, तुम्हारे चौखट से गुजरूंगी, रखूंगी कदम दहलीज पर, तुम्हें आवाज दूंगी, बुलाऊंगी और ले जाऊंगी अपने साथ दूर दूर बादलों के उस पार, जहां मौजूद हैं हमारी बस्तियां, हैं वहां हमारे अपने तुम्हारे ही तरह। पर बैठा हूं कई युगों से इंतजार में, लेकिन लेकिन चांद से कोई

बरसती बादल, झूमती हवाएं, भीगती मुस्कान, ये खूबसूरत सुबह जीवन संघर्ष की डगर पर गामजन, उम्मीदों का लिबास पहने हुए हसरते ही किसी का साथी ना छूटे। कोई किसी की जज्बात से ना खेले, एहसास मोहब्बतों का यूं ही

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। हम उन प्रोग्रामों को प्रसारित करते हैं जो रखते हैं आपसे सरोकार। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर, और ये नंबर हम हर दिन आपको नोट कराते हैं, आज भी नोट कराएंगे कुछ बातचीत आपके साथ करने के बाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। रेडियो वितस्ता के तमाम स्नेही और प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और हमनवा भरत सोपुरी। सपनों के शहर में उतरने का वक्त हो चला है दोस्तों। आज का पूरा दिन भक्ति के भाव और सुरों के खूबसूरत तालमेल के नाम रहा। इस सुहाने सिलसिले को विराम देने से पहले आइए एक बार फिर से समेट लेते हैं आज का दिन यानी 11 अगस्त 2026 की इस पावन तारीख के खास पन्नों को। सबसे पहला पन्ना आज हम आपके सामने रखते हैं कि आज बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री ओपी बनमाली और अंशुल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया के तत्वाधान से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जो मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानियों पर आधारित था। हमें मौका मिला इस आयोजन में हिस्सा लेने का और उन बच्चों से वार्तालाप करने का जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी की 3 कहानियां सभी बच्चों के सामने कही, और साथ में एक बच्चे ने उस कहानी का विश्लेषण भी किया। ये सबसे अद्भुत था। और मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियां है वो हमारे दिलो दिमाग पर कितना असर डालती है ये पता चलता है कि जब आप उन कहानियों को सुनते हैं या उन कहानियों को पढ़ते हैं। हमने बच्चों को एक सुझाव दिया कि आज के दौर में डिजिटल होने के साथ साथ मोबाइल का बहुत सारा असर हमारे आंखों पर, हमारे जिंदगियों पर पड़ा है। हमने बच्चों को सुझाव दिया कि वो जरूर किताबें पढ़ें, खास करके मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां। उन्होंने 3 कहानियों को प्रस्तुत किया, नमक का दरोगा, ईदगाह और एक और कहानी। जी हाँ दोस्तों, हमने उन बच्चों को आमंत्रण दिया एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में आने का, ताकि उन कहानियों को यहां पर रिकॉर्ड किया जा सके और आप सभी तक उनको पहुंचाया जा सके। उन कहानियों में सादगी है और उन कहानियों में बहुत ज्यादा असर है। इस आयोजन में टीम रेडियो वितस्ता की ओर से हमारी कैजुअल अनाउंसर अनु ने भी शिरकत की और उन्होंने पूरी तरह से रिकॉर्डिंग की, और साथ में कल के लिए एक रेडियो रिपोर्ट भी तैयार की है जो कल आप सभी श्रोता शाम के 5 बजे से सुन पाएंगे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, आज का दिन भक्ति, आस्था और संगीत की एक अद्भुत मिसाल रहा। सावन शिवरात्रि एवं मासिक शिवरात्रि, सावन के इस पावन पवित्र महीने में आज सावन शिवरात्रि का महापर्व मनाया गया। आज का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने का दिन रहा। शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे और श्रद्धालुओं ने रात्रि जागरण व जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। दूसरा है विश्व स्टीपलान डे। धार्मिक आस्था के साथ साथ आज का दिन संगीत की वैश्विक धरोहर को भी समर्पित रहा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त ये दिन स्टीपलिन वाद्य यंत्र के माध्यम से दुनिया भर में संगीत, लोक कला और सांस्कृतिक विविधताओं का जश्न मनाने का संदेश देता है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय, और आप सभी के लिए लाया हूं कुछ पंक्तियां रोज की तरह, और जो हम आप सभी को समर्पित करते हैं। और आज की पंक्तियां यूं है, शिव की भक्ति में लीन रहे मन,
हर दिल में अनुराग रहे। शिव की भक्ति में लीन रहे मन, हर दिल में अनुराग रहे। सुर संगीत की इस पावन धारा से हर जीवन आबाद रहे। वितस्ता की लहरों सी निर्मल बहती रहे ये प्रीत हमेशा। वितस्ता की लहरों सी निर्मल बहती रहे ये प्रीत हमेशा। कल फिर होगी नए सुरों से मुलाकात, जब तक सुबह का आगाज रहे। कल फिर होगी नए सुरों से मुलाकात, जब तक सुबह का आगाज रहे। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की पंक्तियां और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएंगी। जाते जाते कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 12 अगस्त 2026 बुधवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। और वंदे मातरम से हम शुरुआत करते हैं, लाते हैं आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत और कल बुधवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 12 होगा, SP बाला सुब्रमण्यम पर तैयार किया गया, पेश करेंगे RJ किरनी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 9 कुर्बानी आप सुनेंगे, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 मिले जुले गीत कार्यक्रम होगा, इंतजार का मौसम होगा शीर्षक, पेश करेंगे रमेश मरहटा। और 10:00 साज और आवाज में आप सुनेंगे डॉक्टर नूपुर सिंह से की गई बातचीत, ये हमारे आर्काइव से आप सुन पाएंगे। 2:00 आप सुनेंगे आपकी फरमाइश का पुनः प्रसारण, जो 7 अगस्त 2026 को हमने प्रसारित किया था। 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, 7:00 होगा रेट्रो हिट्स कार्यक्रम एपिसोड 3, पेश करेंगे RJ किरनी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। और कल की कड़ी है लता तुम जियो हजारों साल। आप सभी जानते हैं स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं है, पर आवाज की दुनिया, आवाज के माध्यम से वो हमारे साथ हमारी पीढ़ियों तक बनी रहेगी, क्योंकि वो भारत रत्न है। हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लता जी का नाम लेते हैं और हम खुश नसीब है उस दौर में जब लता जी हमारे दौर में थी और हमेशा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपना फीडबैक हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई, इसको तैयार किया टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अनु ने। आशा है कि आज का ये सफर आपके दिल को सुकून और मन को शांति दे गया होगा। अब अपने दोस्त और होस्ट भरत सोपोरी को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आपकी अपनी संस्कृति, अपनी आवाज, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हर दिन सुबह 6:00 से रात के 9:00 तक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भक्ति के रंग में रंगे रहिए और अपनों में प्यार बांटते रहिए। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।